अंत लय छड़ाया श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं नाही जा हूं करी ना होई। बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मह ज्योत

गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे

सहाइया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे पंडारा। जिस तू दे तिस क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला,

मिलै तृपताशह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो

वहौ सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिय सब बैरन कौ आज संगरिय पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा।

तुमहो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का

कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न।

राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत पूज खान बहुर राज दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो।

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरे

हरे हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह श्वय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते

कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरा, घर ता तेरा सब किशो है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया।

सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पूंछे, तिसका हुए उधारू।

पाउड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे उथे तेरी राख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे पहु जल बिखम असगाहौ गुर शब्दी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब

जिससे मरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिससे मर

0: आउजी गुरुमुखो
1: सानू
0: सारयां नू रल मिल बैठण दा सुभाग मिलिया है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच बैठे हां। अठवें पातशाह बाला प्रीतम धन श्री गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा भी है। सिख जगत विच खास करके दिल्ली विच बहुत धूमधाम नाल उत्साह नाल संगतां मनाउंदियां हन। ते आओ आपां रल मिल के कुछ चिर अपने भले वास्ते सतगुरु जी का जस गायन करिए। उन्हां नूं वड्डियां कहण नाल उन्हां ने वड्डियां नहीं हो जाना, ते सारी दुनिया छोटा कही जावे उन्हां ने छोटिया नहीं हो जाना। जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जे। ना वो वधदा है ना घटदा है, ना वाहिगुरू नूं फर्क पैंदा है ना वो वड्डा ही हुंदा है। सारी दुनिया वड्याई करे ते ना सारी दुनिया दे कहण नाल वो छोटा ही हुंदा है। हाँ ये गल जरूर है कि उन्हूं धन धन कहण वाले खुद धनता योग बन जाते हैं, उन्हूं वड्डा वड्डा कहण वाले खुद वड्डे बन जाते हैं। ना वो वड्डा हुंदा है ना वो छोटा ही हुंदा है। उन्हूं धन कहण नाल असी धन धन हो जाएंगे। सवाओ श्री हरकृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। अपनी सुरत द्वारा अपने गुरु जी नूं वेखिए, जिन्ना जिन्ना ने डिठा निहाल हो गए ते आपां अपनी सुरत द्वारा गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह दे दर्शन करिए। रल मिल के कुछ चिर बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, इस पंक्ति नूं सफलियां करदियां पुत्र सपुत्र बनण दी कोशिश करिए। बाबाणियां दियां बाबियां दियां कहानियां कहण नाल पुत सपुत बन जांदे ने। बाबाणियां बाबियां दियां कहानियां कहण नाल बाबाणियां कहानियां की करदियां ने पुत सपुत करेन, पुत्र सपुत्र बन जाते ने, नलायक लायक बन जाते ने। बाबियां दियां कहानियां कहण नाल पुत सपुत हो जाते हैं। सो आपां भी रल मिल के गाइए पढ़िए सुनीए, हो सकता है उन्हां दी जिंदगी चों कुछ साढ़े भी पल्ले पै जाए, साडा भी जीवन सफल हो जाए। आ वचन पढ़िए, जिवें चंद चढ़दा है पूर्णमाशी वाली रात नूं चंद्रमा पूरा हुंदा है, उस रात दिन वर्गा चानण हो जांदा है। जदों चंद चढ़िया हनेरा दूर हो गया। इस तरह साडे अंदर गुरु जी दे ज्ञान दा चानण हुंदा है, प्रकाश हुंदा है, ते साडे अंदर अज्ञानता दा हनेरा दूर हो जांदा है। इसे तरह साढ़े गुरु साहबाना का आना, चाहे गुरु नानक साहब होन, चाहे साहिब गुरु अर्जन देव महाराज होन, चाहे साहिब सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब होन, उन्होंने आने नाल संसार विच्चों वहमां भरमां पखंडां कर्मकांडां जातां पातां वहमां भरमां का हनेरा दूर होया। उस हनेरे की गल है, चाहे अंदर दा होवे चाहे बाहर दिसदा जो नज़र आउंदा है, चाहे वह होवे ते चाहे अज्ञानता दा वहमा परमा दा हनेरा होवे, ए दीवे दे आउण नाल चंद्रमा दे आउण नाल दूर हुंदा है। ते सतगुर चंद्रमा स्वरूप हन, सूरज रूप हन, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਚਾਨਣ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਬਣੇ, ਐਸੇ ਚੰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਈਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ।

अहे गुरु धन गुरु हर कृष्ण सच्चे पातशाह अखां बंद रखियो ते अंदरों मनो आखिए

जिस डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण ते आई, श्री हर कृष्ण ते आई।

वाहे वाहे वाहे वाहे वाहे वाहे वाहा वाहे जुड़े रहो जुड़े रहो अखा बंद रखियो सारे

0: सुनिए, पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज ना मिले सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: श्री हर कृष्ण जी ध्याईए, जिस दिठे साधक जाए। गुरु प्यारी सत्संग जी, 5 मिनट का समा होर है, जिनी देर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अपने विराजमान नहीं होंगे उन्ना चर तुसी सारे ही प्लीज बैठे रहो, 5 मिनट का समा होर है। सो बाबा जी हुणा दा बहुत धन्यवाद। अगे पहला जदों जिहड़े हाथ दे विच असीं बैठे हाँ, जदों भी ये आए सी तां इन्हां ने 3 दिन जो दीवान लाए सारी माया इत्थे छड गए, क्योंकि इन्हां नूं पता इन्हां ने बहुत वड्डा स्थान इंडिया दे विच बनाया, इन्हां नूं पता ये स्थान किवें बणदे ने। सो इन्हां दा गुरु घर की कमेटी दे 21 मैंबर ने, और तुहाडी सारी संगत जिहड़े कि 10,000 मैंबर ने इस गुरु घर दे, तुहाडे सारिआं वल्लों बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नाल दी नाल जिदा कहते होंगे ने, पूर्णमासी नूं जदों चंद चढ़दा तां गोडी मार के चढ़दा। सो बाबा जी भी गोडी मार के 10 सालां बाद फिजिकली तौर ते इन्हां ने कीर्तन अज कीता, क्योंकि पहलां कठिनाइयां सीगियां, कई किस्म दे झगड़े झेड़े सी। सो 10 सालां बाद अज बाबा जी ने सारी संगत दे अगे जो प्रोग्राम श्री गुरु कृष्ण देव जी का सुनाया, सो बड़े विस्तार दे नाल सुनाया। सो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीर्ता के करते का हो बेटा और तत्कर गाव सुहिला सुगुर सृजन हार तुम गाव मेरे निर पाव का सुहिला हा वर रित सुहिला सदा सुख हो रहा नित नित जिय डे संभाल देखेगा देव नहार तेरा तन कीमत ना पव तिस दाते गवन सुमार संबद शाह लिखिया मिल कर पव तेद देहो सजन असिसनिया ज्यो हो वह साहिब सुमेल कर करह पहुंचा सदन नित पवन सदन हार सिमरिय नानक से दे आवन राग समहला पहला से कर से गुर से उपदेश गुरु गुरु एक विष्णु एक बाबा जय कर कर तीर्त हो सो कर राख बढ़ाई तोय रहा विश्व टसिया कड़िया पहला थेते बरि महो हुआ सूरज कुरुत अनेक नानक करते किते बेश राग तना श्री महला पहला गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोते तोप मल्ले अनलो पवन चमरो करे सगल बनराय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मोरत नन एक तोहे सहस पद विमल नानक पद गंध बिन सहस तब गंध जल तुमोहे सब मह जोत जोत है सोए तिस दे तन समय चरण होए गुरु साखी जोत प्रगट होए जो तिस पाव वैश्वर्ति होए हर चरण कबल मकरंत लोभित मनो अन दिन मह अहि प्यासा कृपा जल देह नानक सारं को होए जाते तेरा नाय वसा रागोड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बह प्रया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हार लिप मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पन वड्डा हे कर डंडौत पन वड्डा हे रहा शाकत हर रसा दन जाड़िया तिने अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पावै जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम सुबाणी दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशे पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे हे सुख मंडा हे राग गोड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंते सुनो मेरे मिता संत टहल की बेला यहाँ खाट चलो हर लहा गै वसन सुहेला औद गडै दिन सरणारी मन गुर मिल काज सवार रहाओ एहो संसार बिकार संसीमे तरु ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पियावै एहो रस अकथ कथा तिन जानी डाको आयुष बिहारो हर गुर ते मन है बसेदा निज कर महल पावो सुख सहजी

जे मार के गन जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जे पैडे मांद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जय महाप्या तपत बहुकामू, तय हर के नाम की तुम ऊपर छामू। जा त्रिका मन तुझ आकर खै, पह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरत नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंगे कै, नानक जन कै बिरत बिबेकै। हर कै हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन रत्ता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर धन जन कुआ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओठ सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते। आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संतरिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान। योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास पीसर थीवे। अगन माहे होमत प्राण, कनिकसु हैवर भूम दान। न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम साधन। निमक निमकर शरीर कटावे, तौ भी होमै मैल न जावे। हर का नाम संसर कछ नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमाना मन ते हुटै। सोच करै दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबू न बिखिया टरै। जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध का होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच। बहुत स्यान जम का भव व्यापै, अनेक जतन कर त्रिसन्ना त्रापै। भेख अनेक गन्नी बुझै, कोट उपाव दरगै नहीं सिजै। झूठ सनाही ऊपयाल, मोहे व्यापह माया जाल। अवर कर तू सगली जमडान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाई। चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लूरै, सा संगे हम मैं चूरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै बिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गणिय सब ते ऊंचा। जाका मन हुए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्धन को धन तेरो नाओ, निथावे को नाओ तेरा थाओ।
निमाणी कौ प्रभ तेरु मानु सगल कटा कौ देव उदानु करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानहु आपे आपन संगा प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कवर न जान सकोय सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम है उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार एनिया सुप्रभ सदा संभाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासुवार सीगारिया गर्भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध भर जोगन भोजन सुख सूद बिरध पया उपर साख सहन मुख प्याओ बैठ कौ दैन ही निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श ले हो तो नानक सीजे जे प्रसाद तारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जे प्रसाद भोगै सबरसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसै त्यागवर संग रचना ऐसाए दोग मूढ़ अंध व्यापे नान काढ लेहु प्रव्यापे आदंत जो रख नहारु तिस्यो प्रीत न करै गवारु जाकी सीवा नव निध पावै तास्यो मूढ़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दर गै मानु तिसै बिसारै मुगद जान सदा सदा भूलन हार नानक रखन हार पार रतन त्या कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत भस्म संग होए अंधकूप में पतत विकराल नानक काट लेहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मां।

ਹੀ ਸਦਾ ਮਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਣ ਜੋਗ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਤਿਸੈ ਤਿਆਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਈ ਜੈ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾ ਵਿਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੂ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵਹਿ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੂ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਉੱਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੀ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਉਚੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਹੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੂਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਹਸਤ ਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪੁਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੈ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨੁ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨੁ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਧ ਸਾਧ ਚਿਤਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਵ ਹੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਹੁ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵ ਹੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉਰਾਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਓ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੁਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੂ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰਨਾਥ ਨਾਨਕਿਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖੂ ਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗਾ ਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਈ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਤੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹਿ ਬੈਰੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੀ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬੜਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਗੋਚਰ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਵਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਦੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
ਸਾਧੁ ਕਿਸੰ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੁ, ਸਾਧੁ ਕਿਸੰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੁ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨੁ, ਸਾਧੁ ਕਿਸੰ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧੁ ਕਿਸੰ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨੁ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨੁ, ਸਾਧੁ ਕਿਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਾਮੁ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੁ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਾਮੁ, ਸਾਧੁ ਕਿਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧੁ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਾਧੁ ਕੈ ਸੰਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਰੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਛੜਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਛੜਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪਰਮ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿੱਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਯੋਗ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ, ਸਾਧ ਗੁਪਮਾ ਤਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਗੁਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ, ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੌ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੌ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਪਰਿਆ ਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਈ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀਰੀ ਨਾਤਮ ਰਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨੁ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੁਪਰਿਆਸੁ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾ ਹੀ ਧੰਧਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੁਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਇੱਕੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਸੰਗ ਹੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਿਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ਼ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲਬਲ ਜਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਵਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਦਾਖਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਰੂ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ,
ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक गुर धारै जो अंतर नाम, सर्व में पेखै भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक अपर सगल निस्तार। मिथ्या नाही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शु। पर त्रै रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद विख्या पर हरै, मन की वासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मत देखु ऐसा। परसु बैसनु सोजि सुपर सुपर, सन बिसन की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुवै नेह कर्मु, तिस बैसनु का निर्मल धर्मु। काहु फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्रचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरै नाम जपावै, नानको बैसनु परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नितनीत, मन तन अर्पै विशन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म महसूदै। राम नाम सारस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नया वै। वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जानै अस्थूल। चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत हुए, सा संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उर धारै, पस प्रेत मुक्त पाथर को तारै। सर्व रूप का उखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितै न पाइए धर्म, काहू जुगत कितै न पाइए धर्म। नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सतराम दास। आत्म राम तिसने दरी आया, दास दसंतन पाई तिन पाया। सदा निकट निकट हर जानू, सो दास दरगह परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास। प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै। तैसा हरख तैसा सोग, सदा अनंत है नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरता ऐसाई जुगत, नानक को पुर कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन्ना। आपे करन करावण जोग, प्रभावै सोई फुन होग। पसुर आप अंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तत करै अनेक जन, अंत न पारा वार। नानक रचना प्रवरची, बहुविद अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थ वासी, कई कोट मन भ्रमै उदासी। कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है। कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते कंत न पावै। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभेगातम निकोर। कई कोट पर दर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है। कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट प्रदेश परमाहे। जित जित लाभ होते तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पात्र बिरख निप जाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट शशिय सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सुतारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमर तरशास्त्र। कई कोट कीरतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण तीवे। कई कोट जकिनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच। सब ते नेरै सबूते दूर,
नानक आप लिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवै मरह, कई कोट बहुजोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय पाणा तह तह राखे, नानक सब कुछ प्रभ कह हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यासु तिन को मिल्यो प्रभ विनाशु, कई कोट मांगे सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हो अब सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत किन्नु विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट किन्ने भोपात, प्रगति हुए ब्रह्मा ही समात, ताकांत न जाने कोई आपे आप, नानक प्रभ सोई, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो ता तुम प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पी वह, अमर पय सद सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को सास सास समारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहार ने जल थल मही अल सो अष्टपदी, करण करावन करने जोग, जो तिस पावै सोई हो, खिन में थाप थापन हारा, अंत नहीं किछ पार आवारा, हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनिक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब मैं रहा समाई, प्रभावै मानुक गत पावै, प्रभावै ता पात्र त्रावै, प्रभावै बिन शास्ते राखै, प्रभावै ता हर गुण पाखै, प्रभावै ता पत तुधारै, आप करै अपन विचारै, दुहां सिरियां काप स्वामी, खिलै विकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुक ते क्या हुए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए तां सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मह रचै, जी जान तापना बचै, पर मे भूला दह दिसतावै, निमक माए चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लिखा न गने जगदीश, जीव पिंड सब तिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही साथ, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई फुन थियो, कब हूँ ऊंच नीच मह बसै, कब हूँ सोग हरख रंग हसै, कब हूँ निंद चिंद व्यवहार, कब हूँ ऊब आकाश पयाल, कब हूँ बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावनहार, कब हूँ नृत्य करै भोपात, कब हूँ सोए रह दिन रात, कब हूँ महाक्रोध विकराल, कब हूँ सर्व की होत रवाल, कब हूँ हुए वह बड़ राजा, कब हूँ पेखारी नीच का साजा, कब हूँ अपकीरत में आवै, कब हूँ भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखे तिव ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह, कब हूँ हुए पंडित करे बख्यान, कब हूँ मोन धारी लावै ध्यान, कब हूँ तट तीरथ स्नान, कब हूँ सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कब हूँ कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनिक जोन भरमै परमिया, नाना रूप ज्यो सुहागी दिखावै, ज्यो प्रभ भावै तिवै नचावै, ज्यो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबू साध संगत त्यो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल में जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान, श्लोक सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार थले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतराज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जानै मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत,
आपस को करवंत कहावै, जन्म मरै बहु जून प्रभावै, धन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै, नानक इहां मुक्ता गै सुख पावै, धनवंता होए कर गरबावै, तृण समान कत संग न जावै, बहु लश्कर मान कूपर करिया, सो पल भीतर ताका होए विनाशु, सब ते आप जानै बलवंत, खिन मै होए जाए पसमंत, किसे न बधै आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान, सो जन नानक दरगै परवान, कोट कर्म करै हो धारी, श्रम पावै सगले बिरथारी, अनिक तपस्या करे अहंकारु, नरक सुर्ग फिर अवतारु, अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवै, हर दरगै कहो कैसे गवै, आपस कहो जो भला कहावै, तिसे भला ही निकट न आवै, सर्व की रेंजा का मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ हुए, तब सिस कहो सुख ना ही कोए, जब ही जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नीचर ना ही चीत, जब लग मुह मगन संगमाई, तब लग धर्म राय दे सजाई, प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हो छूटै, सहस कटे लक उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै, अनिक भोग बिख्या के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ वृथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहु कै संग, बूझै देखै करै विवेक, अपहे का पहे अनेक, मरै न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहया समाए, आप उपदेशै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप किनु अपन विस्तारु, सब कछ उसका करने हार, उसते पिन कहो किछ होए, थान थनंतर एक कैसोए, अपने चलताप करने हार, कौत करै रंग आपार, मन मै मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किने वखियानी, सच सच सच सब की ना, कोट मधे किन बिरलै चीना, भला भला भला तेरा रूप सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत शरण जो जन परै, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका, बाहुर बाहुर अवतार अष्टपदी, संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मह पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते कौ रखै न कोए, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी करै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जूं लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को छलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का ताव को नाही, नानक संत पावै ता उए भी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक मां हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत के निंदा दुख मैं दुख, नानक संत पावै ता उसका भी हुए मूख, संत का दुखी सदा अपवित,
संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन में मरे, संत की दुखना सुख ते डरे, संत के दुखी को नाही ठाऊ, नानक संत भावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत का दुखी कितै काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थूथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहि, आपन बीज आपे ही खाहि, संत के दुखी को वरना रखनहार, नानक संत भावै ता ले उबार, संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तलफड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक इंदर नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै खेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माही दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी काओ दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजे नयासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट हुए, जैसा भाव है तैसा कोई हुए, पया किरत न मिट कोए, नानक जान सच्चा सोए, सब घट तिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिस हैत आवो सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कुठिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे किसी अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से श्लोक, तज हो सियानप सुरजन हो, सिमर हो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पहु जाय, अष्टपदी मानुक की टेक वृथि सब जा, देवन काओ एक भगवान, जिसके दिए रह अभाय, बहुर न तृष्णा लग आए, मारे राखे को आप, मानुक कह किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म भू सुख हुए, तिसका नाम रख कंठ पर हुए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, पुस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक पूजल मथा, बड़ भागी तेजन जग माही,

दृष्टिता पापम तब कहते होता, जब धारी अपन सुन समात, तब बैर विरोध के संकुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह जापत, तब हरक सोग कहो किस है व्यापत। जब अपन आपा पार ब्रह्म, तमु का कुसोत परम, अपन खिलाफ वर्ती जाना न करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त को किस को गनी। जब एक कह रगम पार, तब नरक सुर को कौन उतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योतर है, तब कवन निडर कवन कत डरे। अपन चलताप करने हार, उठा नानक ठाकुर रगम पार। अपना सी सुख अपना सुन, तय जन मरण कहो कहा बिना सुन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जमकी त्रास कहो किसोए। जब अभिगत गोचर प्रवेका, तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गाते, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपना पापी चर जाना नानक, अपन रूपा पिय प्रजा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तय बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय छल छिद्र लगत को की। जय जो स्वरूपी जो संग समावे, तय किसे पूकम तृप्तावे। कर्ण करावन करने हार, नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शुभ अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पै परवीन, तय बेद कतिब कहा कोचीन। जब अपन आपा पुरता है, तो सगन सगन कहा विचार है। जय अपन ऊंचापन आप नीरा, तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विस्म रहे विस्माद, नानक अपनी गत जानू आप। जय छल छेद अभेद समाया, ऊहा किस व्यापत माया। आप उसको अपया देश, त्यो गुण का ना ही प्रवेश। जय कह के एक भगवंता, तय कौन चिंत किस लागे चिंता। जय अपन आपा पतियारा, तय कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत उचते उच्चा, नानका फसको अपह पहुंचा। दया प्रचो प्रपंच कार, त्यो गुण में किन्नु विस्तार। पापुन तय पई कहावत, को नरको सुर्ग बंचावत। हाल जाल माया जंजाल, हों मैं मोह परम पै पहार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की ओ बखियान। अपन के लाभ कर दिख है खेल संकुचे, तो नानक के कह। जय विगत भगत है आप, जय पसरे पासार। संत प्रताप दुह पाका आपे तनी, उनकी शोभा उनहु बनी। आपह कौत कर आनंद चो, जा पै रस भोग निर्जो। जिस भाव है तिस अपना इलावे, जिस भाव है तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथाह अगंत अतुलै, ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बुलै। सलोक जी जंत के ठाकुर आया फे वर्तनहार। नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति। आप कथे आप सुनने हार, आप है का विस्तार। जात स्वभावै तन सिष्ट उपाय, अपने पाने लय समाए। तुम थे पे नहीं किछ होय, अपन सो सब जगत पुरोय। जाको प्रभ जीव आप बुझाई, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जंत्र सबता कह हाथ, दीन दयाल नाथ को ना। जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मन हो बिसार। तिस तजावर कहाँ को जाए, सब श्री एक निरंजन राय। जी की जुग जाके सभा, तंत्र बाहर जानो साध। गुण निदान बेअंत पार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूरे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो ब्या। प्रतपाल जीयन बहुपात, जो जो रचे सो तिसे त्याज। जिस भावे तिसले मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक किक जानिया। जन लागा हर एक कह नाई, तिसकी आसन बिरथी जाए। सेवक को सेवा बनयाई, हुकम बूझ परम पद पाई। स्त्यो पर नहीं विचार, जा कै मन बसिया निरंकार। बंधन तोर भय निर्वैर, अन दिन पूजय गुर के पैरे। लोक सुखिए पर लोक सुहे, निर्नान कर प्रभ आपै मेले। सास मिल करो आनंद, गुण गावो प्र परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत बचनर के गुण गाओ।

प्राण तरण का है सुहा वाट पैर प्रपिखु नेरा मिटै ज्ञान बिनसय अंधेरा सुनो उपदेशिर दैव सावु मन इच्छे नानक फल पावु हल्त फल दो लेहु सुहा राम नाम अंतर उरता हार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसै ति साच प्रिखिया मंत्र नाम जपू लिबलाए दुख दर्द मंते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी इधर गहने भय खेप तुम्हारी काटे कर को मनवाए नानक बहुर नया वह जाहे तिस्ते दूर कहा को जाए उबरै रखन हार ते आए निरपौ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख नाम जपत मन होत सुख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताकै कार्ज पूरा मत पूरी अमर जाकी दृष्ट दर्शन पेख तू दृष्ट चरण कमल जाके अनूप सबल दर्शन सुंदर हरूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन वसै सुहोत निहाल ताकै निकट नयावत काल अमर पय अमरा पद पाया सात संग नानक कर त्याया सुलोक ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपदी संसंग अंतर प्रभ डिठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक कट माही अनक रंग नाना दृष्टा ही नव निदमृत प्रभ का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाधान तैनाद कह न जाय चर बिस्मा तिन देखिया जसाब दिखाए नानक तीजन सो जी पाए सुवंतर सो बार अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत धरण माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल बंत इन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसन धर माही चार कुंट दै दिशे समाहे तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत में देख ससियर सूरन खेत्र में एक वाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कबू डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइया गुण अमोल सर्व ज्योत में जा की जो तारो स्वामी उत्पोत गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन मह इहो विसास संत जना का पिखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सुव धर्म संत जना सुने सुब वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी रह सत वचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सम्भोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ति सगली उत्पत तिस भाव है ता करे विस्तार तिस भाव है ता एक अंकार अनिक कला लखी न जाए जिस भाव है तिसले मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतरगा जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व पूता वरतारा सर्व नैना पिख नहारा सगल समग्री जा का तनापन जा साफी सुनावन जा निखिल बनाया आज्ञाकारी की निमाया सब कह मद अलिप्त रह जो किच कहना सो आपे कह आज्ञा वै आज्ञा जाए नानक जा पावै ता लय समाए इसते हुई सुना ही बुरा और कहो किने कछ करा आप भला कर तू तत्निकी आपे जाने अपनी जी की आप साजधारी सब साच उत्पोत अपन संग्राज ताकि गतमित कही ना जाए दूसर हुए ता सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने ते सदा सुख हुए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओह तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन का यह सुहाओ जन कह संचित आवै नाओ आप मुकत मुकत करै संसार नानक तिस जन काओ सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करहु साध संगगन सागर तरहु हर तन के पर लेहु पंडार नानक गुरपूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग परमानंद।

0: मन माहि समानी। दुख रोग बिन से पै परमु, साध नाम निर्मलता के कर्म, सब ते उच्चता की शोभा बनी।
1: नानक के गुण नाम सुखमनी।

पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो गई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपां लख होहे तां इक न चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईऐ इक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाईऐ है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जी बुझै ता हुमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निसाण गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या वेखम विचार गावै को साज करे तान खे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहौ नानक विगसै वे परवाहौ साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आख है मंगा है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मूख दुआर नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावीऐ गुणी निधान गावीऐ सुनिऐ मन रखिऐ पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विण पाणे के नाए करी जे ती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आरजा होर दसुणी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कह जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोए ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाश सुनै दीप लो पाताल सुनै पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश सुनै ईसर बर्मा इंद सुनै मुख साला हनुमंद सुनै जुग जुगत तन भेद सुनै सासत सिमरत वेद
नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सत संतोख ज्ञान सुना है अठ साठ का इशनान सुना है पढ़ पढ़ पावे मान सुना है लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सारा गुणा की गाह सुना है सेख पीर पात साह सुना है अंधे पावे राहो सुना है हाथ होवे असगाहो नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पछुताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मान कोए मन्ना है सुरत होवे मन बुद्ध मन्ना है सगल भवन की सुध मन्ना है मोहे चोटा न खाए मन्ना है जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ना है मार्ग ठाक न पाए मन्ना है पथ स्यों परगट जाए मन्ना है मग न चले पंथ मन्ना है धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ना है पावह मुख द्वार मन्ना है परवार साधार मन्ना तर तारी गुर सिख मन्ना नानक पवह ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पाव है दर्ग है मान पंच सोहे दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवे सचियार तबले उपर किता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया वुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया किता होए किता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख न जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राहे हे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे ही सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जेव फुर माए तेव तेव पाहे
जेता कीता तेता नाउ विण नावै नाही को थाउ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन देह पानी धोता है उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिए मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावे तिल का मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नहाओ सब गुण तेरे मैं नाही पोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वक्त कवण कवण थेत कवण वार कवण से रुति माह कवण जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लेखन लेख कुराण थेत वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सिरठी कौ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड़ा साहिब वड़ी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपौ जाणै अगै गया ना सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश उड़क उड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलो इक धात लिखा होए ता लिखी है लिखा होए विनाश नानक वड़ा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाही एती सुरख ना पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानी है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन होना विसरा है अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करण देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड़ा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड़ ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कहो जाने सोए जे वड़ आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड़ा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केते गणत नहीं विचार केते खप तुट है वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केतिया दुख पूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाण होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जीतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आखै से भेके के जिसनो बख्से सिफत सला नानक पात साही पात साहो अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल प्रवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आखिया न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद
ਆਖ ਹੈ ਈਸਰ ਆਖ ਹੈ ਸਿੱਧ ਆਖ ਹੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖ ਹੈ ਦਾਨਵ ਆਖ ਹੈ ਦੇਵ ਆਖ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ ਕੇਤੇ ਆਖ ਹੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕ ਹੈ ਕੇਈ ਕੇ ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਵਾਰ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੁਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੀ ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇੰਦਾ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਸ਼ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜੇ ਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਥ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਬੇਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾ ਵਹਿ ਲਿਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਹੋ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਇਕੀਸ ਸੁਣ ਗਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ
ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਣ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖਹੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਪਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗ ਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਆਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖਾਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ।

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ, ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੂਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ, ਸਾਹਿ ਸਹਾਣ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮਹੀਪ, ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ, ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਤਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੋ ਏਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ, ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬਤੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਸ਼ੰਗ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ, ਅਪੂ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਪੇਖ ਹੈ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ, ਅਪੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਪੀਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ, ਅਸਰਗ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਅਜਨਮ ਹੈ, ਅਬਰਨ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਪਰਨ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ, ਅਪੰਜ ਹੈ, ਅਚੂਜ ਹੈ, ਅਚੰਜ ਹੈ, ਅਮੀਤ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ, ਅਤੰਦ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ, ਅਸੂਜ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ, ਅਲੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਅਜਮ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਅਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੋਕ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਪਰਮ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਪੀਤ ਹੈ, ਅਬਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ, ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ, ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਪਾਹਨੇ, ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਪਾਹਨੇ, ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ, ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ, ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ, ਸਮਸਤੀ ਬੇਬੂਤੇ,
निकलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज रज वेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोग वेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रज वेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोग वेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सेददा बोधदा बिरद करता अधो उर्द अर्धं अगं ओघहर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सेददाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तु पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजे राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वगयानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगी त्रिपंगी अनंगी नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट शांत व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुन काल यत्र तत्र विराजहि अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हू नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानही जेह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानही केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानई पुरतीन लोक चाउ दह के बिख जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयंभव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख अदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जाक है जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नेत पाकत नित कूट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार छंद त्वा प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपहु प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहो शाहान शाह
राजा न राज पाना न पहान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदूत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ चाचरी छंद तुआ प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रथिस अधिस अदृश अकृश भगवती छंद तुआ प्रसाद कथते के अशेज देस है के अभिज भेस है के अगंज कर्म है के अपंज परम है के अभिज लोक है के अदित सोक है के अवतूत वर्ण है के बेपूत करण है के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वर्ण है के सर्वा अवर्ण है के जागतं कृति है के शत्रं क्षत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अन पाओ अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहीने के एक है अधीन है के रोजी रजा कह रही मेरे हाक है के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के आप भूल गुना है के शाहान शाह है के कारण पुनिंद है के रोजी देहांत है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परमं फहीम है के आकल अलम है के साहिब कलम है के हुसनल वजू है तमामल रजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमल सिकस्ता है गरीबुल परसता है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निधान है हरीफल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वस्वाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभ्रगं त्रिबादे अगंजे अगादे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अशिज है अशूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विपुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विपुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंत है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अधिक है अलेख है अपेक है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्वा प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
ਸਰਵੰ ਕਰਮੰ ਸਰਵੰ ਧਰਮੰ ਸਰਵੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਵੰ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਪੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ ਪਰਮਾਥੰ ਪਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਵ ਸਾਥੇ ਆਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਬਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਭੰਗੀ ਅਨੂਪੇ। ਨਾ ਪੋਤਰਾਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਏ ਨਾ ਸਤਰਾਏ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾਏ ਨਾ ਤਾਤਾਏ ਨਾ ਮਾਤਾਏ ਨਾ ਜਾਤਾਏ ਨਾ ਪਾਤਾਏ। ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ੋ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰੰ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਅਪੇਖ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾ ਹੈ ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਬੇਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਨਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣਗਨ ਮੁਦਾਮ ਅਰਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਪੰਜ ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ ਮੁਨਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ਅਨਸ਼ੇਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ਗਤਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਪੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ ਆਜਾਨ ਬਾਹ ਏਕੈ ਸਦਾਹ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਛੇਜ ਗਾਤ ਆਜਿਜਨਾ ਬਾਤ ਅਨਝੰਜ ਗਾਤ ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਅਨਠਟ ਅਪਾਰ ਅਢੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਣਬ੍ਰਣ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੁਣਾ ਲਹਿ ਅਰਕਾਲਹਿ ਹੈ ਖਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮਹਿਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਉਬਾਰਨ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨਯ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨਯ ਹੈ ਸਰਬੰ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੰ ਕਰ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਸਿਆ ਹੈ ਸਰਬ ਨਾਸਿਆ ਹੈ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਹੈ ਸਰਬੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਸ ਹੈ ਖਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ ਅਜੱਪਾ ਜਪ ਹੈ ਅਥਪਾ ਥਪ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰੁਣਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਧਰਣੀ ਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜੱਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਖਾਲਕਾਇਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈ ਨਿਰਪਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈ ਭਾਵ ਭੰਜਨ ਹੈ ਅਰੇ ਗੰਜਨ ਹੈ ਰਿਪ ਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਬ ਆਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗ ਤਾਮ ਸੰਗ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁੱਧ ਜੁਧੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰੇ ਅਨਾਦੰ ਬਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬੰਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ ਏਕ ਅਸ਼ਰੀ ਛੰਦ
अजय अलय अपहय अभय अभू अजू अनास आकाश अगंज अपहंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अठा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे कुयंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बेभूते सदा सच्चदानंद सत्रम प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमल रहीमे चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाह दसवें तो प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिदान के देख फिरे ओकार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखिया तो प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हुते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तोरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पूजान के भूप पहली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे इते भय तो कहां पहे भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फरै सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पिख है पौन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबा सो साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चरै सार की तार पशैया

नान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पाग ते नर फिर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहत फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो प्रलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कह ऐसे ही ऐसे सो बैसो बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशा कौ शीस निवायो को बुतान को पूजत है पाश को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कबेओ बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावाओ आप हाथ दय मोहे बचावाओ सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिया सब बैरन को आज संग्रिया पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाट कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम पे पाऊ सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दय मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बकतरा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सिवकन को शिव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बाद कियो घट घट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घाट घाट के पट पट की जानै जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तह सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपने बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपने बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत पूज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जी अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आय है ताके काल निकट न है आय है
रक्षा होए ताहे सब

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रह

दास संग ते मार बिदारे, गोबिंद भगत का महल न पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल सृष्ट के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार रहाओ, जगत पास ते लेते दान, गोबिंद भगत का करह सलाम, लूट लेहे साकत पत खोवह, साध जना पग मल मल धोवह, पंचपूत

दुख बिन से सुख की न उठाऊ, जप जप अमृत नाम अघाय, संत प्रसाद सगल फल पाए, राम जपत जन पार परे, जन्म जन्म के पाप हरे रहाऊ।

नाही, घट घट अंतर सर्ब समाही। अपने दास का हलत पलत सुवारे, पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोबिंद, तंत मंत भजिय भगवंत।

निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौं सच व्यापार।

बचाए। निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जयकार करे सब लोग। संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत।

आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहाए ले, आनद मूल सदा पुरुषोत्तम।

पत खूवै। गुर प्रसाद मैं डगरू पाया, जीवन मरन दो मिटवाया। कहो कबीर इहो राम की अंश,

फिरै बिचारी संत भाग उह पाछै फरै गुर प्रसादी मारों डरै साकत कियो पिंड परायण हमको दृष्ट परै त्रिख डायण।

सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर छनक छन हरी, जो लग प्राण तो लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे। सोहागन प्रवण सोहागन पवन त्रै लिया, दस अठ प्राण तीर्थ रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे,

आवै साधु बिन ऐसे अभिगत जावै रा जारु तिसै जो राम न चेतै तन मन रमत रह मह खेतै रहाओ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए सूत बिना कैसे मणि परोइए

जम ते छूटै, कुट कुट मन कसवट्टी लावै, सो कूटन मुक्त बहु पावै, कूटन किसै कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार। रहाओ नाचन सोए जो मन स्यों नाचै, झूठ न पतिय परचै साचै,

पांच पलीतह कौ प्रबुद्ध है, नौ नायक की भगत पहचाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री कै जतन ना मुचरे, कहो कबीर हमें ऐसे लखन, धन गुरुदेव अतरूप विचखण।

साधु रहाउ। जपिया नाम जपिया अन्न, अंबे कै संग निका वन, अन्न बाहर जो नर हुवे, तीन भवन में अपनी खुवे, छोड़ है अन्न करह पाखंड, ना सुहागन ना उहिरंड, जग में बखते दूध धारी, गुप्ती खाव है वटका सारी, अन्न बिना न हुए सुकाल,

गया पिंड भरता, बनारस अस बसता, मुख वेद चतुर पढ़ता, सगल धर्म अचिता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता, खट कर्म सहत रहता, सिवा सकत संवादम, मन छोड़ छोड़ सगल भेदम।

हीरा पसुआरा, सोना गढ़ते हीरा सुनियारा, सोना गढ़ते हीरा सुनारा, ज्यों बिखई हीरा परनारी, कौडा डारत हीरा जुआरी, जह जह देखो तह तह रामा, हर के चरण

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिरंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधावै धाय, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई, तेग वाही देख के अंडिट कीता, तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां, नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां स्वासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका, सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रचिया रियायत, तो देख तेग पते बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहु दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृत सर साहिब जी के दर्शन इसनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, मत पत दे राखे आप वाहिगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई, दातार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम, जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार, सेवा संभालदा दान, खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणिया दे मान सतगुरु, नितानिया दे तान गुरु गरीब नवाज, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, आप जी का फरमान है, लख खुशियां पात साहियां, जे सतगुरु नदर करे निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए दे मां बाका अनुसार। गरीब नवाज आप जी ने कृपा कीती है, आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी जोसफ अनिल प्रसाद, पुत्र राज प्रसाद, बीबी परमजीत कौर प्रसाद, अते बच्ची मारदरी हुआन गोहचलीन, सुपुत्री जौल गोहचलीन, बीबी एमरलीन गोहचलीन, इस सुभाग जोड़ी दे आप जी के हजूर आनंद कारज होए हन। सतगुरु जी आनंद कारज की मर्यादा निभाउंदियां आप जी के सेवादारा पासों बेअंत बेअंत भुलां होईयां खिमा कर देनी अगे तो, सेवा दे योग आप सिर ते मेहर भरिया हथ रख के बना लेना। सतगुरु जी सुभाग जोड़ी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, ग्रिश धर्म दियां खुशियां खेड़े झोली विच पाउणा, अपने दर घर दी प्रीत और प्रतीत बख्शिश करके नवाजना, दोहां परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, आपसी प्रेम प्यार दी दात भावना की दात बख्शिश करके नवाजना। सतगुरु जी इस वक्त आप जी ने सुंदर पोशाके अर्पण किए गए हैं, आप जी ने अंगीकार करने सदीप काल सेवकां दे पड़दे कजने, बख्शिश किए भंडारियां चुकड़ा प्रसादी देग हाजिर है, आप जी के दर प्रवान होवे जी, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण की आग्या होवे। गरीब नवाज बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां, तिल फुल भेटा माया आप जी के चरणा विच भेट की, तीसनू संगत दिया हाजरियां माया दर ते प्रवान करनी, सबना दरों घरों चढ़ दियां कला बख्शिश करके नवाजना, सबना दियां अरदासां बेनतियां दर ते प्रवान करनी, अपने चरणा दी प्रीत बख्शिश करके नवाजना। गरीब नवाज कृपा करो, पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी, हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो, अखरवाद घाट भुल चुक माफ करनी, सरबत दे कार्ज रास करने, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ।

भगवती अरसो भगवती जल जोगंती बहुपात सत्वर मेरा सदा दयाल मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महासुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चला ए सब तब जिन्हें शरण की तिहन जिन्हों की विचार दर्शारण के पाई उस महानुप्रभु के नाल जुड़िया रहे जिस महानुप्रभु की कृपा सबका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप है उस महानुप्रभु के चरणों नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल व्यतीत होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण प्री सत्कारियो ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हां पासो अज दे जिहड़े हन चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरुण प्री गुर इतिहासिक इतिहास सरुण प्री दासल फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जावार प्रपा जियो। सतगुरु करे हर पै बेनती, मेरी पैज रखो अरदास जियो, पैज रखो अर्जन केरी। हर देव नाम निरंजनो, चल दिया होए बेली जम दूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई, हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर तार कृपा सतगुरु मिलाया, तन तन कैसा बाजियो। मेरे सिख सुनो पुत भाइयो, मेरे हर पाणा हो मैं पाजियो, हर पाणा गुर पाया। मेरा हर प्रभ करे साबा जियो, भगत सतगुरु पुरख सोई, जिस हर प्रभ पाणा पावे। आनंद अनहद वजह वाजे, हर आप गल में लावे। तुसी पुत भाई परिवार मेरा, मन में कोकर निर जा जियो। तुरड़ क्या प्रवाणा फिरे ना ही गुर जाए, हर प्रभ पा जियो। सतगुर पाणे अपने मैं परिवार सदाया, मत में पिछे कोई रूसी रोव सी, सो मैं मूल ना पाया। मित पैजै मित बिकस, जिस मित की पैज भावे। तुसी विचार देखो पुत पाई, हर सतगुरु पहनावे, सतगुरु प्रतक होंदे। मैं राज आप टिकाया, साहब सिख बंदा पुत भाई रामदास पैरी पाया। अंत सतगुरु बोलिया मैं पिछे, कीर्तन करियो निर्वाण जियो। केशो गोपाल पंडित सदियो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। और कथा पढ़ी हर नाम सुनिए, बेबाण हर रंगुर भावे। पिन पत्तल क्रिया दिव्या फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर सबद सच निशान जियो। सतगुरु पुरख जे बोलिया।

जय माया ममता तजी सब ते पयो उदास कहो नानक सुन रे मना तह कट ब्रह्म निवास।

संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम पैर भी बिलावली पुनिया की गावै बंगली पुनसले की।

अकाल मूर्त अजूनी सहपंग गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार चुपे चुप न हो गई जे लाए नहार देवतार भुखिया भुख न उतरी जे बना पूरिया पार सह स्यान पालक होए ता एक ना चले ना किव सच्याड़ा होइए किव दूरे टुटे पार हुक्म रजाए चलना नानक लिखिया ना हुक्मी होवन आकार जीव हुक्म मिले वड्याए पाइए एक हुक्मी जगशीश एक हुक्मी सदा पवाइए हुक्मी अंदर सब को पार हुक्म ना कोय नानक हुक्मी जे बुझे कहो मैं के ना कोय कावे को तान होवे किसे तान कावे को दात जाने निशान कावे को गुण